सुख दिए तहना तहना जाने तत लाया लाहा माया कारणे दै दै ढूंढ जाए देवनहार दतार प्रभ निमख न मनु विसाए लालच झूठ विकार मोह ऐसा पे मन माहे लिवट चोर निंदा महा ताहू संग विहाए तुद पावे तां बख्श लै खोटे संग खरे नानक पावे पार ब्रह्म पाहण नीर तरे सलोक खाद पीत खेल तहत परमे जन्म अनेक पौ जलते काडो प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी खेलत खेलत आयो आनक जो दुख पाए खेद मिटे साधु मिलत सा सतगुर बचन समाए खिमा गई सच सांचियो खायो अमृत नाम करी कृपा ठाकर पई आनंद सुख विश्राम वेख नवाही बहुत लाभ घर आए पतवंत करा दलासा गुर दिया आए मिले भगवंत आपन किया करे आप आगे पिछे आप नानक सो सिमरिया जा घट घट रहा व्याप श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहाल पौड़ी अखर मह त्रै पवन प्रभ तारे अखर कर कर वेद विचारे अखर शास्त्र सिमरत प्राण प्राणा सिम अखर नाद कथन विख्याणा अखर मुक्त जुगत है परमा अखर कर्म कीर्त सच धर्मा दृष्ट मान अखर है जेता नानक पार ब्रह्म नरलेपा श्लोक हाथ कलम आगम मस्तक लिखा वंती और जरहो सब संग अनूप रूपा वंती अस्तत कह न जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारियां पौड़ी हे अचेत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जां कै सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है भी होवनहार हे संतन कै सदा संग निधरिया आधार हे ठाकर हो दास रहो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई

हरन भरन जाका नेत्र भोरं तिसका मंत्र न जाने होरं आनंद रूप मंगल सद जाकै सर्व थोक सुनिए करता कै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याहे तह भगतां सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत ना पाया जा की लीला की मतना है सगल देव हारे अवगा है पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोही अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम त्यावन से तय गुण में जा को परमाहे जन्म मरे फिर आवे जाए ऊच नीच तस्के स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान ना रूप ना जा कह रंग हो ना पेह करें एक रंग।

खजूर सोदार रह रहा साहब दे पाठ दी अरदास है जी। अखर वादा घाटा भुल चुक मुआफ करनी पड़ी सुनी बाणी दा भाव आईया संगतां दे दास रिया दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दर हाजरियां तिल फुल पे ढावां प्रवान करनियां धरो करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शनी परिवार में सुख शांति कारोबार में वादे करने अरदास बेनती है संगतां वालों भाई तारा सिंह गिल उन्हां दी तंदरुस्ती वास्ते परिवार वालों संगतां वालों अरदास बेनती रहमतां प्रार्थ रखना तंदरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शनियां बख्शियां खजानिया विचों कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजिर है करी पाक साल सोज पवित्रा हुन लाभ भोग हर राय आप जी दा सीन प्रसाद ज्यो छके नाम वाहिगुरु जपे श्रीमुख वाग दी बख्श करो सही प्यारे मेल जना मिले आम दा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या पही अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिल बोच है राज करेगा खालसा आकी रहे ना ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो

परम सम्मान योग चुको चुक अटल जवर शतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे विड़पागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो सामदे दीवाना विच जो सतगुरां दी पावन बाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है वो विचार आपा सांझी कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस पावन शब्द दी विचार चल रही है वो पावन शब्द पहले पातशाह धन धन गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह

पिता गुरुदेव ने बख्शिश का नाम रखा भाई मियां। अज तो बाद इस बख्शिश वादा हुंदा ए मियां साहिब हो गया साडा। शायद आप नूं पता होवे भाई मियां साहिब जी ने बहुत प्रचार किया इस संपर्दा ने कमाल कर दिती। मैं सिर्फ आप नूं बेनती की आख है सिर वढ के रख देना नहीं तो बंदे अंदर आ ही जाती है ना। इसे नूं सतगुरां ने बाणी विच कहा कबीर जा दिन हौ मुवा जिस दिन मैं मर गया। पर आप नूं पता है मरण तो बाद कदी बंदा बोलदा है फिजिकल तौर तो बंद तो मरण तो बाद बंदे की आवाज बंद है। जिदन मैं मर गई चेते रखियो उदन अंदर बाणी मुताबक आनंद पैदा होंदा। कबीर जा दिन हौ मुवा पाछे भया आनंद मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजें गोबिंद। इत्थे मैं बेनती की जी गुरु साहब ने कहा अपना सिर वड के भेटा कर दे जे तू प्रेम खेडन की श्रद्धा रखना है तां मैं मेरी नहीं चलनी। सतगुरु का इं शब्द पढ़ लो गुरु साहब की प्यारे सिख भाई साहब भाई गुरदास साहब जी का जिन्हें सिर भेट कर दिता कि मुरदा होए मुरीद सो गुरु गौर समावै। थोड़े जे मैं अर्थ कर देंगा संगत जी मुरदा होए मुरीद सो गुरु गौर समावै। ये लफ्ज ध्यान ना सुनियो गौर का लफ्ज ही अर्थ है कबर। यह भी मैं याद है तकरीबन 20 साल पहला जो शुरुआत की इतने मैं कथा करके गया दी मुरदा होए मुरीद सो गुरु गौर समावै। गौर का लफ्ज ही अर्थ है कबर। भाई साहब कहते गुरु कबर है फिर ध्यान ना सुनो कबर गुरु नहीं। ये एक उदाहरण दिती है समझाने लिए गुरु कबर की तरह है ते कबर च कदी जिउंदे बंदे दफनाए नहीं जाते कबर विच थां ही उन्होंने मिलती जिहड़े मर जाते हैं। जिउंदे नूं थां मिलती नहीं ना। भाई साहब ने कहा भाई गुरदास साहब कहते मुरदा होए मुरीद सो गुरु गौर समावै। मरण वाला ही गुरु कबर भी समा दिंदा ते कबर विच तीन बड़े वड्डे गुण ने। आपां याद रखियो हर चीज की जो व्याख्या जाने हैं कबर च सब तो पहला गुण एक है गुण लेना है जी ये नैगेटिव पक्ष नहीं लेना क्योंकि जो आप कथा करने हैं जी कई बार ना उ उदाहरण वासना ली हुंदी है उ उदाहरण प्रेम ली हुंदी। आप जी पाठ कर दे हो एक तड़फ है रब नूं मिलन दी जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावै मच्छी ते पानी। दूजे पासे ओही जेड़ा पात्र है ओही जेड़ा जीव है उन्हूं कहिंदे नहीं मच्छी नूं जीव दे स्वाद ने मार दिता तू जीव दे स्वाद तो बची। एक ही है ना गुरबाणी दी जेड़े सज्जन व्याख्या जानदे आ जिस भाव च शब्द कहै उस च लैणा मुरदा होए मुरीद सो गुर गौर समावै। कबर का पहला गुण ए वे जिन्हों घर दे भी नहीं रखते कबर उन्हों रखती है। कभी किसी ने बंदे मरे नूं घर रखे जी खास करके जो जेडे कबर चल जाते हैं मरे हुए नूं कबर थां देंदी है। दूजा कबर का गुण ए वे जिन्हों ओ थां दे दे उहदे पर्दे ढक देंदी है। हालांकि गुरबाणी च वह मौत नाल संबंधित है पर पता उहदे च भी लग जाता कबर निकरियां दा घर है। बाबा फरीद साहब का सलोक है गौर निमाणी सड करे कबर आवाजा भी मार दिए निकरिया घर आओ तेरा कोई घर नहीं मैं तेरा घर हां सर सर पर मैथा आवना मरनो ना दरियाओ। कबर सब तो पहला जिन्हों परिवार भी नहीं रखता उन्हों थां देंदी है। मेरा सतगुरु वो है जिन्हों दोवां थावां ते कोई ना रखे उन्हों सतगुरु रख लेंदा है। मैं दो थां कहा कला संसार नहीं कहा सच है। गुरबाणी मुताबक जिन्हों करतार दे घरों विच भी धक्का पै जाए गुरु समर्थ को इन्नी को ताकत है वह करतार के धक्या होया पवित्र करके रब के घर दवा थां दवांदा है। महाराज जी ने कहा पहली गल कबर निथावे नूं थां देंदी है। दूजा कबर का गुण है जिन्नी मर्जी बीमारी भैड़ी होवे जिवें मर्जी किसी की मौत हुई हो सकता कई बार उसकी स्किन देख के आपां नक ते मास्क ला लीए बदबू आ रही है कबर कहिंदी कोई गल नहीं तू मेरे को आन दे मैं मिट्टी पा के इनू पर्दा ढक देंगी। कबर पर्दा ढक देंदी है सच्ची है। दुनिया नफरत करती है जदों कोई मुरदा बन के गुरु को चला जाता है ना सतगुरु पर्दा पा के ढक लेंदा है।
निर्गुण राख लिया, संतन का सदका सतगुरु ढाक लिया, मोए पापी पड़दा। तीजी गल, कबर थां देंदी है, कबर पर्दे ढकदी है। तीसरा कबर दा गुण एक है, जेदे पर्दे ढके जिन्हों थां देवे उन्हों अपना रूप दे देंदी है। महाराज जी ने भाई साहब कहंदे आ कि मुर्दा होए मुरीद सीस काट कर गोए, मुर्दा होए मुरीद सो गुरु गोर समावै, शब्द सुरत सावधान होए ओ आप गवावै, तन धरती कर धर्म शाल मन दब विछावै। हां ओ अपने सतगुरु नूं होर सौखा, जिहड़ा असीं अक्सर पढ़ने इक पौड़ी, मुर्दा होए मुरीद ना गली होवना, सबद सिदक शहीद भरम पौख होवना, गोला मुल खरीद कारे जोवना, ना तिस भुख ना नींद ना खाना सौवना, पीयन होए जदीद पानी ढोवना, पखे दी तागीद पग मल धोवना। अगे महाराज कहिंदे ने कि सेवक जिहड़ा है उहदे च इन्ने गुण होण, पखे दी तागीद पग मल धोवना, सेवक होए संजीद ना हसर रोवना, दर दरवेस रसीद परम पिरमरस पोवना, चंद मुबारक ईद भोग खलोवना। चलो मैं थोड़े जर्थ कर देना जी, ये संगत जी ये नहीं कि आप जी पता नहीं, समय तां क्या सिर वड्डन का अर्थ केवल फिजिकल नहीं, इहदा अंतरीव अर्थ है मैं वड्डी जाए। मुर्दा होए मुरीद ना गली खोवना, मर के ही मुरीद बनदा है गल्लां नाल लगी। मुरीद होवे जिहदे कोल सबर है, जिहदे कोल सिदक है, जिहड़ा शहीद का अर्थ है कि सच मिच वह सच की गवाही देने वाला है। सबर सिदक शहीद भरम भौ खोवना, भरम ते भौ तो मुक्त है। गोला मुल खरीद कारे जोगना, असल च मुरीद ओख है कि जरा गुरु दर ते विक जांदा है ते जो गुरु कहिंदा है वह कार करदा है। मैं बेनती करा जी, ये भगत जी ने बचन किया, जे तेनों प्रेम की खेड खेडन का चाह है ते अपना सिर गेंद बना दे। चलो एक उदाहरण मैं आप जी नूं होर देना जी, सिर्फ मन नूं समझाने लई है। सिर भेट करन वालियां दीआं ते कतारां ने साडे च, जिवें हुण भाई साहब कहा, मैनूं कल वी इन्हां सिंघां कहा वी 6 जून बारे मैं भी बेनती करके जाऊंगा। कई वी हुंदा नहीं, शायद 84 दी गल नहीं करदे है ना। मैं एक कविता लिखी सी, इत्थे वी तुहानूं इक वारी सुना गया सां, बस 2 सतरां ने। फिर चढ़िया महीना जून दा, साडे सीने पांदा शेक, यह हर साल इस दे हुंदा। फिर चढ़िया महीना जून दा, साडे सीने पांदा शेक, तू लांबू लाया तख्त नूं सानू अजे भी देंदा सेक। ओ दिन आपां नूं भुलने नहीं चाहिए, जिवें गुरमुख प्यारियां कहा। चलो मैं विच ही अनाउंसमेंट कर देना कि चाहीदा है कौमी कार्ज वास्ते, फिर प्लीज इहनूं धड़े नाल ना जोड़ियो। मेरे लिए बड़ी वड्डी समस्या हुंदी है जी, क्योंकि सुन वाला अपने ढंग नाल भी अर्थ कर जांदा है। हुण उहनां भी तां सिर भेट कीते ना। चलो एक उदाहरण मैं आप जी नूं होर देना। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पंघाणी का युद्ध लड़िया, तो पहला युद्ध लड़िया अपनी जिंदगी का पौंटा साहब के नाल जी। तो पंघाणी के युद्ध की पूरी डिटेल जिहड़ी है वह सतगुरां ने दसम की बाणी विच आप दर्ज की है। तो जदों युद्ध बारे मैं पढ़ना हाँ, मेरा वैसे चित है भी किसी दिन जिवें आ कथा करने उहदी कथा की जाए पंघाणी के युद्ध की। महाराज वार वार जिक्र करते हैं, उस विच कमाल की गल एक है कि महाराज जी की भुआ के पुत्र दो शहीद होंगे, कृपाल दास उदासी कमाल कर देंगे, लालचंद कमाल करते, मामा कृपाल जी कमाल करते, तो उस सतगुरु अपना जिक्र करते। पर पहला जंग है महाराज का लड़ रहे हैं, हर गल दे नाल देखो, हर गल नाल गुरु गोबिंद सिंह वाहगुरु जी चेते करते हैं, हर गल जिमें 3 वार महाराज जी ते होंदे आ। ते सतगुरां ने लिखिया है कि खरी चंद कोपे कमानंग सभारंग, प्रथम बाजंग तान बाणंग प्रहारंग, दुखिया दुतिया ताकै तीर मोको चलायंग, रख्या दाईव कान श्वै कै सदायंग, तृतीय तीर मारियो सो पेटी मजारंग, बिदंग चलकितंग द्वाल पालंग पधारंग, चुभी चन चरमंग कहुचू न काय आयंग, कलंग केवलंग दास जानंग बचाएंग। शब्दां वल ध्यान दिया जी, खरी चंद पहाड़ी राजा है, ते महाराज वो जंग दा
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਆਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਜਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੋਪੜੀ ਉਡਾਉਣ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਡਨੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਛੂਕਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ, ਤੀਸਰਾ ਤੀਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੀਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੀਰ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੱਖ ਦੁਆਲੇ, ਉਸ ਪੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਭੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਤਸਮਾ ਸੀ, ਤਸਮਾ ਸਮਝਦੇ ਨੀ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਧਾਗਾ ਸੀ ਡੋਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਤੀਰ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਸਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੀਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਸੀ। ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕਮੋ ਕੋਪੇ ਕਮਾਨੰਗ ਸੰਭਾਰੰਗ ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਜਿੰਗ ਤਾਣ ਬਾਣਿੰਗ ਪ੍ਰਹਾਰੰਗ। ਬਾਜਿੰਗਦਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ, ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦੁਤੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤੀਰ ਮੋਕੋ ਚਲਾਏਂਗ, ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਚਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾਈਵ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਨ ਸ਼ਹਿ ਕੇ ਸਦਾਏਂਗ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੀਰ ਮਾਰਿਓ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰੰਗ, ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਪੇਟੀ ਚ ਮਾਰਿਆ, ਬਿਦੰਗ ਚਿਲਕਿਤੰਗ ਦਵਾਲ ਪਾਲੰਗ ਪਧਾਰੰਗ, ਚੁਬੀ ਚੰਚਰਮੰਗ ਕਛੂ ਨਾ ਕਾਏ ਆਏਂਗ। ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚੁਬੀ ਪਰ ਗਹਿਰਾ ਘਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੁਬੀ ਚਿੰਚਰਮੰਗ ਕਛੂ ਨੇ ਕਾਏ ਐਨ ਕਲੰ ਕੇਵਲੰਗ ਦਾਸ ਜਾਨੰਗ ਬਚਾਏਂਗ। ਇੰਨਾ ਛੂਕ ਦਾ ਤੀਰ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਬਲ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡਾ ਬਲ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲੰਕ ਕੇਵਲੰਗ ਦਾਸ ਜਾਨਕ ਬਚਾਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਜ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਕਰੰਗ ਲੈ ਕਮਾਨੰਗ ਹਣਗ ਬਾਣ ਤਾਣੰਗ, ਸਭੈ ਵੀਰ ਦਾਏ ਸਰੋਗ ਹੰਗ ਚਲਾਏ, ਸਾ ਕਰੋੜ ਰਾਏਂਗ ਵਾਹਿ ਕਾਲ ਕਾਏਂਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾਰੇ ਸੋ ਜੋਧਾ ਲਤਾਰੇ, ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਆ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਲਾ ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵੀ ਸਿਰ ਅਰਥ ਹੈ। ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬਦਰੂਦੀਨ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੈਯਦ ਬਦਰੂਦੀਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟ ਚੇਟਕ ਸੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਇਬਾਦਤ ਦੀ, ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਮ ਪੀਰ ਦਾ ਸੀ, ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਸੈਯਦ ਬਦਰੂਦੀਨ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਬਦਰੂਦੀਨ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੇ ਆਪ ਪਹੁੰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦਾ

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

जन कोए, सलोक बहु शास्त्र बहु से मृति, पिखे सर्ब टडूल पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत बखियार, योग अभ्यास करम धर्म क्रिया सगल त्या भर मदे फिरिया, अंग प्रकार की अभव जतना पुन दान हमें बहु रतना, शरीर घटाए हमें कर राति वर्त नेम करे बहु भांति, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिय एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरा चर जीव महा उदास, पीसर थीव अग्न माय होमद प्राण, कनक सब है भरभूम दान, न्योली कर्म ग्रह बव आसन, जैन मार्ग संयम अध साधन, निमक निमकर शरीर कटाव

जल तो वैबोध अनीत शुद्ध गावे काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम उदरे पत मूच बहुत सियाण जमका भाओ व्यापै अनेक जतन कर त्रिशन्ना त्रापै भेख अनेक अगन बुझै कोट पाप दरगे नहीं सिजै छूट सनाही ऊभ पयाल मोह व्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं मन हर का नाम जब दुख जाए नानक बुलै सह सुभाए चार पदार्थ जेको मांगे साथ जना की सेवा लागे जेको आपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सत गावै जेको अपनी शोभा लोरै सा संगे होमै छोरै जेको जन्म मरण ते डरै साथ जना की सरणी पलै जिजन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान सासंग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने निचा सऊगनिया सब ते उचा जाका मनो ए सगल किरीना हर हर नाम दिन घटगट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखा है सगल सृष्ट साजना सूख दुख जन समदृष्टिता नानक पापन नहीं लेपा निर्धन गौ धन तेरो नाम ने थावे को नाह तेरा थाओ ने माने को प्रभ तेरो मान सगल घटांको देवो दान करन कराम नहार स्वामी सगल घटांके अंतर जामी अपनी गत में जानो आपे आपन संगा प्रभ राते तुमरी उस्त तुम ते होए नानक वरना जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में ऊतम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में

साध संग बस्त अगोचर लाहा साधु कै संग आ जारु सहाय साधक संग बसे थान उचाय साधु कै संग महल पाहुचाय साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै गुरबान साधक संग सब गुरु उदार है साध संग साजन मीत कुटाम निस्तार है साधु कै संग सो धन बावे जिस संते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वथान गम नानक साधक संग सबल जनम साधक संग नहीं गशकाल दर्शन भेट तो होत निहार साधक संग कलुकत हराय साधक संग नर पर हराय साधक संग इहा मुहा सुहेला साध संग बिछर तर मेला जो इच्छाए सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिदवस नानक उतरै सा सुंदरस साधक संग सुनो हर नाऊ सा संग हर के गुण गाओ साधक संग न मंते बिसराय साध संग सर पर निस्तर साधक संग लगै ब्रह्म मीठा साधु कै संग घट घट डीठा

सादगी स्वभाव उष्टे उची सादगी स्वभाव मुष्टे मुची सादगी स्वभा साध बने आई नानक साध बरा भेद ना भाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अगर ना पेखा एक बिन कोए नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल मह कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी के दृश्यमा जैसे राजरंग को लागे तुलपवान ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक जो वसुदा कऊ खोदा कऊ चंदन लेब ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाव नानक जो पाव का सह स्वभाव

ब्रह्मज्ञानी की सब पर माया ब्रह्मज्ञानी ते काश बुराना भया ब्रह्मज्ञानी सदा सामदर्शी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्मज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नान ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान

तावद्बन्धा ब्रह्मज्ञानी कवय स्वपरा ब्रह्मज्ञानी सफल फला ब्रह्मज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्मज्ञानी जप सगल संसार ब्रह्मज्ञानी का एक रंग ब्रह्मज्ञानी का बसे प्रभु संग ब्रह्मज्ञानी का नाम आधार ब्रह्मज्ञानी का नाम प्रवार ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्मज्ञानी अहम्बद त्यागत

रस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्श पर त्रय रूप न पेख नेत्र साध की टहल संसंहेत कर्ण न सुने काहू की निंदा सबते जाने आप इसको मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की बासना मनते ठर इंद्री जित पंच दोखते रहत नानकूट मदहेगु ऐसा अपरस वैसनो सो जिस सुप्रसन्न विष्णु की माया ते हो भिन्न कर्म कर तो बहने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म का फल की इच्छा नहीं बादशाह है केवल भगत कीर्तन संग राचा है

जगतकार अंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मंदे बिनसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल कराय नत नीत मंत्र अर्पय बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै।

को तारे सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहो जुगत के ना पाइये धर्म नानक तस्मै लै सलखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तसनदरी आया दाद संतन भाई तन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगे परवान अपने दास को आप कृपा करा तिस दास को सब सोची पर सगल संग आत्मो दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्म हिताब है जीवन मुक्त सौ गहाव तैसा हर्ग तैसा सोहग सदा अनंत नहीं ब्योग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा अमृत तैसी भी खाटी

लोक वस्तत करहे अनेक जन अंत न पारा बार नानक रचना प्रभरची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई गोट हुए पुजारी कई गोट आचार व्यवहारी कई गोट भय तीर्थवासी कई गोट बान भ्रमे उदासी कई गोट वेद के स्रोते कई गोट तपीसर होते कई गोट आत्म ध्यान धारे कई गोट कब का विचारे कई गोट नपतन नाम ध्यान में नानक करते का अंत न पावे कई गोट भय अभिमानी कई गोट अंत अज्ञानी कई गोट कृपन कठोर कई गोट अभिगात मने कोर कई गोट पर दर्प को हिरे कई गोट पर दुख ना करे कई गोट माया शरम माहे कई गोट प्रदेश प्रमाहे जित जित लाभो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई गोट सिद्ध जति जोगी कई गोट राजे रस भोगी कई गोट पंखी सर्प उपाए कई गोट पाथर बिरख न बजाए कई गोट पवन पानी बह संतर कई गोट देश भूमंडल कई गोट ससीर सूर नखियत्र कई गोट देव दानव इंद्र शेर शत्र सगल समग्री अपने सुतारे नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई गोट राजस्ताम सत कई गोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र कई गोट किए रतन समंद कई गोट नाना प्रकार जंत कई गोट किए चिर जीवे कई गोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई गोट जख किन्नर पिशाच कई गोट भूत प्रे सूकर मृगाच सबते नेरा सब हूते दूर नानक अलिप तरिया भरपूर कई गोट पाताल के वासी कई गोट नरक सुरक निवासी कई गोट जन्मे जीवे मरे कई गोट बाजूनी फिरे कई गुड़ बैठ दी खाए कई गुड़ घाले तक पाहे कई गुड़ किए धनबंध कई गुड़ माया मैं चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब कुछ प्रभु का हाथे कई गुड़ भय बै रागी राम नाम संग तिन लब लागी कई गुड़ प्रभु को खो जनते आत्म मैं बार ब्रह्म हंते कई

गुरुप्रसाद तब जय जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोई अस्तूल न कि जन्मे न कुछ मरिया पर चलते आप ही करिया मन जाम दृष्ट अंदृष्ट आज्ञा कारी धारी सब सृष्ट आपे आप सकल में आप अनक जुगत राज थाप थाप विनाशी नायक शिखंड धारण धार्यो ब्रह्मांड अलख अपे प्रख प्रताप आप जपायता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभा वन सकल संसार उदरय तन मंत प्रभ के सेवक सकल उदान प्रभ के सेवक दुख विसार नापे मेले कृपाल गुरु का शब्द जप है निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनो कृपा करे बड़भागे नाम जपत पामे विश्राम नानक तिन पर को उत्तम करमान जो किस करे सो प्रभ का रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए हो वह सो हो करने हार बछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना उपजे तस्माहे समाए वही सुख निदान उनु

राष्ट्रपति संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सा मेद विसारो चरण कमल हृदय उतारो।

अष्टपदी जब कारे काशना दृष्टिता पापुन तब कहते हो तब धारी अपन सुन समाता बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हर सो कहो किसे व्यापत जब अपने आप आपार भ्रमत मुहकांक सुपत परम अपन खेला भरतीजा नान करने हर न दूजा जब होवत प्रभ केवल तबंध मुक्त कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन आओ तार जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए तब शिव शगत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत धर तब कमन ने डर कमन कत डरा आपन चलता आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो कहा अविनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही पर जा जा निर्मल पुरख पुरख पा धोता तय बिन मैल कहो क्या धोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीत छल छिद्र लगत गौ की स जय जो स्वरूप जो संग समावे तक से भूख त्रम कम त्रिपताव करण करावन करने हार नान करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा अपन संग मनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत पाए जय सर्व।

शांत संग अंतर ब्रह्म ठीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सकल समय ग्रीय घाट माहे अनगरंग नाना दृष्टा हे नाओ निध अमृत प्रभु का नाम देही मैं सगा विश्राम सुन समाध अनहत नाद कहना जाई आचार्य विस्मा तिन देख्या सियाव दिखाए नान तिजन सो जी पाए सुवंतर सो बाहर अनंत घटघट व्याप रहया भगवंत तरणमय आकाश भयान सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंधन प्रभद है पार ब्रह्म जैसी आ गया तैसा कर्म पौन बाणी भय संतर माए चार गुण दसे समाहे दसे भिन्न को ठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद ब्राण सिमृत मैं देख ससियर सूर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभु की सबको बोलाए आप अडोल न कबू डोला सर्व कला कर खेला खेल मोला भाइय गुणे अमोल सर्वजोत मैं जाकी जोत हरियो स्वामी ओत बोध गुरु प्रसाद प्रमुखा नास नानक तिन मैं ए विश्वास संजना का बेखन सब ब्रह्म संजना का हृदय सब धर्म संजना सुने सो भजन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी ये राहत सद भजन साधु सब कहत जो जो है सोई सुख माने करन कराम न हार प्रभ जाने अंदर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोहिया सत किया सब सात तिस प्रभ ते सगली उत बात

पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच ऐपी सच नानक होसी पही सच सोचै सोच न होवै जे सोची लाख बार चुपै चुप न होवै जे लाए रहा लिवतार।

सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया परपूर।

छंद तवै प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन देह रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत केह।

त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, जन्म है, वर्ण है, भूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूझ है, असू

कार्य काम आतदुत परिचानमित गाते अखंड अलिसे कर्म दृश्य धर्म सर्वा प्रणाड अंडड भाड चाचरी शांत व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे पारे हरि अंग करि अंग निर्नामे अकामे पजांग प्रयाशंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वरती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र

आए ना तितर है ना मित्र है परे है पवित्र है परथी से अधि से अदृश्य कृषे भगवती शांत व प्रसाद कहते क्या छेज देस है क्या भेज भेस है क्या गांज कर्म है क्या भेज अपांज भरम है

के सर्वं कलि है, के सर्वं दलि है, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र दान्य है, के सर्वत्र गावन है, के सर्वत्र पाहुण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है,

मुक्त विपहुत है, पर पहुत प्रभा है, सजुगत सुदा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी रूप है, समाहतों पराज है, सदा सर्ब साज है, समाहतल सलाम है, सदैव लय काम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, उवं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभग त्रिभादे गंजे गादे सुभंग सर्वभागे सो सर्वानुरागे त्रिपुगत स्वरूप है, छेद है, अछूत है, के नरकं प्रनास है, पृथ्वी उल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, दैवं सदा है, विपुक्त स्वरूप है, परजुगत अनूप है, निरुक्त सदा है, विपुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, परजुगत अनूप है, चाचरी छंद

परे है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म वास है, जास के झास है, प्रजहंग प्रयात श्यांद। नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे,

सच सत्य आया, ओनी मध्य पैना रखन का सुकृ धर्म कमाया, ओनी दुनिया तोड़े बंधन पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीशी अगला नित

का तेड़ धोती का खाई अच्छर जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे परवान मलेश ताले पूज है प्राण अपाख्या का कुठा।

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते गुरु चरणा नाल मीडिया राही जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप जी सारे विभागी हो तंता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ अज जो सतगुरां ने अमृत वेले पावन हुक्म बख्शिया उस दी विचार आपा कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अज जो सतगुरां ने पावन हुक्मनामा बख्शिया ओ पावन शब्द चौथे पातशाह धन धन गुरु रामदास पिता जी की पावन रसना तो उच्चारण किया होया। बैराड़ी राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 719 720 उत्ते सुशोभित है। सतगुरां ने पहले पदे नूं ही राह दा बंद बनाया ते बख्शिश करदे ने हर जन राम नाम गुण गावे। हर जन

उस परमात्मा दा जन, उस परमात्मा दा सेवक की करता है? कहने लगे उस परमात्मा दे गुणगान करता है, उस परमात्मा दी सिफतां करता है।

ताए ताए कृपण श्रम की नोवा कतर करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा किति काज न आया। कर वंश वारी सेजा कामन थाट बनाया। संग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया। सारो दिन समजूरी करता तै मुसले छुराया। खेद पयो बिगारी न्याई कर कह काम न आया। पयो अनग्रह प्रजा को प्रभ को तिस हृदय नाम वसाया। साध संगत कह पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवां।

निकट जानो प्रभ स्वामी सगल रेन हुए रही साधु संगत हुए प्राप्त ता प्रभ अपना लहिया सदा सदा हम छोर तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा।

सगले दुख पलायन रहाउ, जो मांगे सोई सोई पावे, सेवार के चरण रसायन, जन्म मरण दूहू ते छूटे।

पित बात हंता उखद हर को नाउ राउ। तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुख रास। ताको बिगड़ना को लागे जानकी प्रभ आगे अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रभ एक। बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवा हर हर नाम सदा सद जाप। तारियन ग्रह पार ब्रह्म स्वामी वसदी कीनी आप राम। जिसके से फिर तिन्ही संभाले बिन से सो।

मन ना बसायो छोड़ जाए वाहु चित लायो सो संचयो जित भूख तसायो अमृत नाम तोसा नहीं पायो काम क्रोध मोह कूप परया गुर प्रसाद नानक को तरिया टोडी महला पंजवा हमारे कै हरी हरी आन अवर सिंह आन ना करी रहा वडे भाग गुर अपना पायो गुरमुख हर नाम दृढ़ायो हर हर जाप ताप व्रत निमा हर हर त्याय कुशल सब खेमा आचार विहार जात हर गुनिया महा आनंद कीर्तन हर सुनिया कहो नानक जिन ठाकर पाया सब किछ तिसके ग्रह में आया टोडी महला पंजवा कर चौथा दोपदे एक ओहंकार सतगुर प्रसाद रूडो मन हर रंगो लोड़ाए गाली हर निहो ना होए राव हौं टोंडींदी हौं टोंडेंदी दर्शन कारण बीथी बीथी पेखा गुरमिल भरम गवाया हे ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्हो लेख लिखियो तुर माथे ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्भ गैलड़ो मूड़ो हियो रे हियो महाराज दी मायो दीहड़ न्याई मैं फाके उरे राव कणो कणो कणो सद लोड़ बिन लहने कैठे पायो रे महाराज रो गाथ गाथ वाऊ स्यो

जी की फतेह। गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे, गावे को जापै दिसे दूर, गावे को वेख्या हादरा हदूर, कथना कथी न आवे कोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। गुरु प्यारियो, वी रीड दिस एवरी डे। जपजी साहब महाराज की कृपा नाल सारे गुरसिख रोज पढ़ते ने। गुरमुखा नाल विचार चल रही सी ते क्वेश्चन आया कि महाराज की सानू केड़ा ज्ञान बख्श रहे जदों महाराज कहिंदे गावे को गुण वडियाइयां चार। केड़े चार गुणा की गल महाराज ने कीती है? क्योंकि सानू सारे नू पता है, वी ऑल नो दैट वी आर स्टक इन इल्यूजन, अ माया, अ मैट्रिक्स। ते माया दे विच जदों साडा मन फसिया वै, ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह नू जदों पुछया गया ते उन्होंने समझाया, कहिंदे ए माया दे तीन रूप ने जिन्हों महाराज ने गुरबाणी च कहा, तेही गुणी संसार भ्रम सुत्ता, सुत्या रहण विहाणी, गुर कृपा ते से जन जागे, जिन हर मन वस्या बोले अमृत बाणी। कहिंदे ए तीन गुणा की माया जिहड़ी है उहदी गल महाराज ने सानू समझाई। द थ्री काइंड्स ऑफ माया, द थ्री गुणस, थ्री क्वालिटीज ऑफ माया। ए तिना गुणा नू होर गुरबाणी ने सानू खोल के समझाया, रजो गुण तमो गुण सत्तो गुण कहिए ए तेरी सब माया। कहिंदे माया दे तीन रूप ने, रजो गुण तमो गुण ते सत्तो गुण। हुण रजो गुण दे जदों असीं पढ़ीए होर खोलीए ते रजो गुण च की आउंदा है, वट इज देयर इन रजो गुण। जदों साडा मन रजो गुण दे विच फस जांदा है, वैन आर माइंड इज स्टक इन रजो गुण, ते उहदे च किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां ने? आशा, अभिलाषा, चिंता, फिकर। जदों असीं कोई काम करदे ना गुरु प्यारे, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेतीबाड़ी कर रहा है, कोई होर काम कर रहा है, वो आशा, अभिलाषा, चिंता, फिकर जिन्हों आपां इंग्लिश कह दिंदे आ, होप्स, डिजायर्स, विशेज, एंगजाइटी, डिप्रैशन, सारा कुछ आ जांदा है। लेकिन महाराज कहिंदे तू सारा कुछ नहीं लेना, काम ते तू करना है। अगर तू मालक दे गुण गाएगा, गावे को गुण वडियाइयां चार, ते तैनू चार चीजां ही चाहिए। सिर्फ एक चीज तैनू रजो गुण तो चाहिए, एक चीज तैनू तमो गुण चो चाहिए, एक सत्तो गुण च चाहिए। ते अगर तू तीनों चीजां कमाएगा, मतलब समझ लो थोड़ा जा होर ध्यान नाल, रजो गुण दे विच सारा कुछ है, आशा, अभिलाषा, चिंता, फिकर, होप्स, डिजायर्स, विशेस, इट्स देयर, बट वी ओनली वॉन्ट वन थिंग, जिन्हों गुरबाणी सानू समझाया, असीं चलने अगे गल करदे। उदां ही तमो गुण दे विच काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, ईरखा, द्वैत, नफरत, निंदिया, चुगली, सारा कुछ, लस्ट, ग्रीड, एंगर, अटैचमेंट, ईगो, स्लैंडरिंग, गॉसिपिंग, साडा मन यही अवस्था दे विच रहिंदा है। पूरे दिन च वेखिए ना, जो काम भी करते हैं, आशा, अभिलाषा, चिंता, चिंता, फिक्र, जो वेले बह जाने तो तमो गुण ते चले जाता मन। वैन वी आर सिटिंग आइडल, आवर माइंड गोज इन द तमो गुण, मन इत्थे ही रहिंदा है, बिकॉज दिस इज अ गेम ऑफ माइंड, मतलब फुरने लैंदा रह रहा, इट इज टेकिंग द थॉट्स ऑल द टाइम, 24 घंटे फुरने लैन डिया मन, सानू पता ही नहीं साडा मन फुरने लैन डिया। ते अगर सानू पता ही नहीं लगना कि केड़ा फुरना आपां लैना है ते केड़ा नहीं लैना, ते मालक नू किद्दां मिलांगे? क्योंकि यह सहज दा मार्ग है, ते सहज दे मार्ग वास्ते सानू शब्द दा, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे गुर शब्द दा ज्ञान चाहिए। ज्ञान जदों चाहिए तो वह महाराज कहिंदे गुरु नू पुछ के तू की करना की है,
ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਢਿੰਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ,

सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सहाई साध सिंह जीओ सतगुरु जी की अपार बख्शिश रहमत दर घर दे सेवक सरदार दिलबाग सिंह जी भैन जी वरिंद्रपाल कौर सरदार जसविंदर सिंह जी अते सरदारनी राजविंदर कौर दोहां परिवारां दे बच्चां दे शुभ आनंद कारज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी दे अंदर गुर मर्यादा अनुसार संपूर्ण होए। सतगुरु जी का कोटान कोट धनवाद शुकराना है। सतगुरु जी रहमत करन सुभाग जोड़ी दे सिर ते रहमतां भरे हथ रखण दीरगार जा माता पिता दे आग्याकार मन नीवा मत उच्ची गुरसिखी जीवन आपसी परस्पर प्यार सतगुरु जी जीवन दे विच कामयाबियां ते चढ़दियां कलां दी दात बख्शिश करन। सो दोहां परिवारां नूं शुभ आनंद कारज दी लख लख वधाई होवे अते दोहां परिवारां वल्लों सारियां आईयां संगतां दा तहि दिलों धन्नवाद जो कि आप जी ने खुशियां दे समय विच शरीक होके खुशियां नूं चौगुणा कीता है। सो आप सारियां दा दोहां परिवारां वल्लों बहुत बहुत धन्नवाद। हुण सब तों पहलां गुरु घर वल्लों बच्चों नूं सिरोपाओ दी बख्शिश की जाएगी। उस तों उपरंत बच्चों के पेरेंट्स केवल इत्थे बच्चों नूं शगन लाउणगे खुशी का इजहार करनगे। बाकी जिन्हां ने बच्चों नूं प्यार देना है बाहर बैठणगे उत्थे आप सारियां ने बच्चों नूं प्यार देने की कृपालता करनी। सो बेनती प्रवान करनी इत्थे सिर्फ बच्चों के पेरेंट्स ही बच्चों नूं शगन पाउणगे। सो बच्चों नूं बेनती है खड़े होकर सतगुरु जी की आसीस सिरोपाओ की बख्शिश प्राप्त करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी।

सिमरत शास्त्र नाम दृढ़िया होमे जाए ता निर्मल होवै गुरमुख परचय परम पद पैया इहो जग वर्ण रूप सब तेरा जित लावे से कर्म कमैया नानक जंत वजाए वाजे जित भावे तित राहे चलैया बलावल महला चौथा गुरमुख अगम गोचर ध्याया हौ बल बल सतगुर सत पुरखैया राम नाम मेरे प्राण वसाए सतगुर परस हर नाम सुमैया

प्रभ छोड़ न सके बहुत मन भैया, कहे प्रभ अवर अवर किछ सीज की जय, सब बाद सिंगाद फुगट फुगट या कियो सिंगाद मिलन कै ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया, हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करे तेरे वस पैया, दया दीन करो रख लेवो नानक हर गुर सरण समैया। बिलावल महला चौथा। मैं मन तन प्रेम ठाकर अगम अगम ठाकर का, खिन खिन सरदा मन बहुते उठैया, गुर देखे सरदा मन पूरी, ज्यो चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया, मिल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मिले,

मन सुख सुमाना राम गुर तुठे हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम वडभागिया सुहागनी हर मस्तक माना राम हर प्रभ हर सुहाग है।

कहे गुहा प्रभु जी, कहे पूजा प्रभु जी, ले हो हर नाम अपना देहो, तुझ बिन नहीं ठाओ, नानका बल बल जाओ, लोभ पाती देहे बिन भजन होवत गेहे, जमदूत महा भयान, चित गुप्त कर महदान, दिन रैन साक्ष नाए, नानका हर सरनाए, भय पंजना मुरार, कर दया पत उधार, मेरे दुख गने ना जाहे, हर बिना कथे समाहे, ओट गह ओट चित भी नाथ, नानका दे रख हाथ, गुण हर गुण दे गोपाल, सर्ब घट प्रतिपाल, मन प्रीत दर्शन प्यास, गोविंद पूर्ण आसिक निमख, रह न जाए वड़भाग, नानक पाए तुझ प्रभ, तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर, जिन मील जल स्यों हेत, अल कमल भिन्न न भेत, ज्यों चकवी सूरजा।

सच ना लागे मल। जाओ देखो तहे कोई का होर जीव पाए, वे को बेका फलो हार किए फल जाए। रस कस खाए साध गवाए, कूड़े लालच लपटे लपटाए, झूठे गुरमुख सच कमाए। द्वादश मुद्रा मन अतूता, अहनस जागो कवे न सूता। जागत जात रहे लिव लाए, गुर परचे तिस काल न खाए। अतीत पए मारे बहराई, परमत नानक तह लिव लाई। द्वादशी दया दान कर जाने, बाहर पीतर बाहर पीतर जातो पीतर आने। बरती बरत रहने काम, अजपा जाप जपे मुख नाम। तीन पवन मैं एको जाने, शुभ सत संजम साच बिछाने। तीरस तरवर समुद किनारे, अमृत मूल शिखर लिव तारे। डर मरे न बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पत खोए। डर मह घर घर मह डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने। चौदस चौथे ता थावे लहजा पावे, राजस तामस सतकाल समावे। ससियर के कर सूर समावे, जुग जुग की कीमत पावे। चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मांड रहा लिवलाए। अमावस्या चंद गुप्त गणा गहनार, बुझो ज्ञानी शब्द विचार। ससियर गगन ज्योत हिलोई, कर कर वेखे करता सोई। गुरते दिसे तिस सो तिस ही माहे, मन मख फूले आवे जाहे। कर दर थाप थिर थान सुहावे, आप पछाणे जा सतगुर पावे। जह आसा तह बिनस बिनासा, फूटे खपर दुबदा मनसा। ममता जाल रहे उदासा, प्रणवत नानक हमता के दासा। बिलावल महला तीजा वार, सत घर दसवां इक ओंकार। सतगुर प्रसाद अदित वार, आद पुरख है सोई। आपे वरते अवर न कोई, ओत पोत जग रहे आप रोई। आपे करता करे सो होई, नाम रते सदा सुख होई। गुरमुख बिरला बूझे कोई, हृदय जपनी जपो गुण तासा। हर आगम अगोचर परम्पर स्वामी, जन पग लग त्याव होए दासन दासा। रहाओ सोमवार सच रह समाए, तिसकी कीमत कहे न जाए। आख आख रहे सब लिव लाए, जिस देवे तिस पल्ले पाए। अगमा गोचर लख्या न जाए, गुर के शब्द हर रह समाए। मंगल माया मोह पाया, आपे सिर सिर धंधे लाए। आप बुझाए सोई बुझे, गुर के शब्द दर कर सूझे। प्रेम भगत करे लिव लाए, हमें ममता शब्द जलाए। बुधवार आपे बुध सार, गुरमुख करणी शब्द विचार। नाम रते मन निर्मल होए, हर गुण हगावे हमें मल खोए। दर सच्चे सद सद शोभा पाए, नाम रते गुर शब्द सुहाए। लाहा नाम पाए गुरुद्वार, आपे देवे देवन हार। जो देवे तिसको बल जाइए, गुर प्रसादी आप गवाइए। नानक नाम रखोर तार, देवे देवन हारे को जयकार। वीरवार वीर परम पलाए, प्रेत भूत सब दूजे लाए। आप उपाय कर वेख वेका, सबना करते तेरी टेका दी। जग तेरी सरनाई, सो मिले जिस आप मिलाई। शुक्रवार प्रभ रहा समाई, आप उपाय सब कीमत पाई। गुरमुख होवे सो करे विचार, सच संजम करनी है कार। वर्त ने अमृता प्रत पूजा, बिन बूझे सब भाव है दूजा। छनिचरवार सौन शास्त्र विचार, हमें मेरा भरमे संसार। मन मुख अंधा दूजे पाए दरबदा, जामदार वादा चोटा खाए। गुर प्रसादी सदा सुख होए, सच कारणी साच लिव लाए। सतगुर सेवे सेवड़ भागी, हमें मार लिव लागी। हमें मार सच लिव लागी, तेरे रंग राते सहज सुपाए। तू सुख दाता लह मलाए, कस्ते दूजा नहीं कोए। गोर मख बूझे सोजी होए, इन पंद्रह तिथि तय सत वार। महारुति आवह वार वार, दिन सरैन तिवे संसार। आवागौन किया करतार, निहचल सच रहया कल तार। नानक बुझै को शब्द विचार। बिलावल महला तीजा, आदि पुरख आपे सृष्ट साजे। जी जंत मया माया मोह पाजे, दूजे पाए प्रपंच लागे। आवे जाए मरे अपागे, सतगुर भेटिए सोजी पाए। प्रपंच चुके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख। जाके मन वस्या प्रभ एक रहा, सृष्ट पाए आपे सब एक है। कोई न मेटे तेरे लेख है, सिद्ध साधक जे को कहे कहाए। पर मैं भूलावे जाए, सतगुर सेवे सो जन बूझे। हमें मारे

0: तिस पावे सोई थिया।
1: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
0: संत के दुखी को दरगे मिले सजाए।
1: संत का दुखी सदा सहकाइए,
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए।
1: संत के दुखी की पूजे ना आसा,
0: संत का दुखी उड़ चले निराशा।
1: संत के

0: अविनाशी सुख आपन आसन
1: है जन्म मन को कहां विनाशन
0: जा पूर्ण करता प्रभ सोए
1: तब जम की त्रास कहो किछ होए
0: जा अवगत गोचर प्रभ एका
1: तब चित्र गुप्त किस

गया। निर्दुख भय लिव लाए, गुण गाव वह गुण उच्चरह, गुण मह सब समाए। नानक गुरपुर ते पाया, सहज मिलया प्रभु आए।

जाए रागे ना दे बाहर इन्हें हुक्म ना बुझा जाए नानक हुक्म बुझे तना रासोए सतगुरु ते सोजी पाए सब किछ तिसे होया जो तिसै धीर जाए सतगुरु विच अमृत नाम है अमृत कह कहाए गुरमति नाम निर्मलो निर्मल नाम त्याए अमृत बाणी तत है गुरमुख वसै मन आए हृदय कमल परगासिया ज्योति ज्योत मिलाए

माए गुरु शरणाय बराय नानक लय चढ़ाए सदगुरु पुरखा हर त्याय सत्संगत सदगुरु पाए सत्संगत सदगुरु सेव दे हर मेले गुरु मेलाए एह पवजर जगत संसार है गुरु बोहित नाम तराए गुरसिखी पाणा मन्या गुरपुरा पार लंघाए गुरसिखा की हर तूड़ दे हम पापी पीगत पाहे तुरमस घर

तनी वहुना पाठ पटंबर पाहि सती जाले तुड़ी बच लुडंदड़ी सुहा नानक तस नाले गुर कैसो दिया राधिया नाम रंग बैराग जीते।

कराए। सोरठ सोरस विदिय कब न फिका होए, नानक राम नाम गुण गाय दरगा निर्मल सोए। जो प्रभ रखे आप तिन कोय न मारे, अंदर नाम निधान सदा गुण सारे। एका टेका गाम मन तन प्रभ धारई।

तिथ भक्त सकलो करण सच्चा मनसोय सच खंड वसै निरंकार कर वेख नर निहाल तिथ

तुद बाज समरथ कोए नाही, कृपा कर बनवारिया। एस नौ होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारिया। कह नानक लिवै बज हो, क्या करे बेचारिया। आनंद आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किल विख कटे, ज्ञान अंज

सहज ना उपजै बिन सहजै सहसा ना जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहसै जियो मलीन है कित संजम तोता जाए मन तो वह शब्द लग हो हर सो रह हो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एहो सहसा इव जाए जी हो मैले बहर हो निर्मल बहर हो निर्मल जी हो ता मैले तिनी जन्म जुऐ हारिया एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मन हो विसारिया वेदा मह नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर है ज्यों बेतालिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुऐ हारिया जी अहो निर्मल बहर हो निर्मल बहर हो ता निर्मल जी अहो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुँचै नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले से बन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई जी अहो रह गुर नाले गुर के चरण हिरदय त्याए अंतर आत्मा समाले आप छड सदा रह परण गुरबिन अवर न जाने कोए कह नानक सुन हो संत हो सो सिख सन्मुख होए जे को गुर तेवे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर थै कोई पुछ हो बिबे किया जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो हो बिन सतगुर मुक्त न पाए आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गाव हो सच्ची बाणी बाणी ता गाव हो गुरु केरे बाणिया सिर बाणी जिनको नदर कर्म होवै हिरदय तिना समाणी पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जपयो हो सारंग पाणी कह नानक सदा गाव हो एह सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाज हो।